तिस गुड़ मिले गुरमुख निस तारा सलोक महला तीजा हौ मैं ममता मोहनी मन मुखा नू गई खाए जो मोहे दूजे चित लाए दे तिन्ना व्याप रही लपटाए गुर कै शब्द पर जालिए तां एह विचो हो जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवे जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए नानक मन ही

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भाव है सो करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह वाह सिफत सलाहा है गुरम

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह से जन सोहने, तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे, नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखियां दे अज्ञानी, उपाए कितै ना लभनी, कर भेख थके भेखवानी। गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी, हर जियो अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी। सलोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए। वाह वाह करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाह करमी बोलै बुलाए। वाह वाह करत्या सुभा पाए, नानक वाह वाह सतर जाए। महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है, गुरमुख लद्दी भाल। वाह वाह शब्दे उच्चरै, वाह वाह हिरदै नाल। वाह वाह करत्या हर पाया, सहजे गुरमुख भाल। सेवड भागी नानका, हर हर हृदय संभाल। पौड़ी ए मना अत लोभिया, नित लोभे राता, माया मनसा मोहनी, दह दिस फराता। अगै नाउ जात न जाए सी, मन मुख दुख खाता। रसना हर रसना चखियो, फीका बोलाता। जिन्ना गुरमुख अमृत चाखिया, से जन त्रिपताता। सलोक महला तीजा, वाह वाह तिसनु आखिया, जे सच्चा गहर गंभीर। वाह वाह तिसनु आखिया।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास

जन नानक नाम त्याई तू सब किल विख काट सुद राग गुजरी वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पंजवा।

प्रभ जिस नानक मस्तक भाग पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना वसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना

वन्य मित्र असा डड़े से खाट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा खान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

मोहत कड़ी मोहत न विसरे नानक रविय नित पौड़ी सूर वीर वरियाम किने ना होड़िए फौज सतानी हाथ पंचा जोड़िए दस नारी अवतूत बेन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़िए त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़िए हों तिस अगै।

ही ना जाए। गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू कमाव दिया सुख पुंच त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता हुए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए।

अहंकार सब किस तिसकै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच सुमाहरा तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रख आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना तो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै है हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहू ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कि यो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर का।

पदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो राज देहे ता कमन बढ़ाई जो भीख मगावे हैं ता क्या घट जाई तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण बहुर ना हुए तेरा आवन जान रहाओ सब तैं उपाई परम भलाई जिस तू देव है तिसै बुझाई सतगुर मिले ता सहसा जाई किसहों पूजो दूजा नदर ना आई।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम पई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी

अंतर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत सरन ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हम तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी। हम क्यों कर मिल है जूठारी, हमरे जिये होर मुख होर होत है। हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी। जन नानक सरन तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ। जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति। ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै शुक्ति। छका एक देव गंधारी महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाई है,

ज्यो अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

बदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बसारियो, माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो, देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन कराम नहार स्वामी, नानक ओट गही रहाओ, आप मेट पए सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा लही।

अग्ञान अंधेरा संती काटिया जी दान गुर दैनी कर कृपा कर लीनो अपना जल ते शीतल होनी कर्म धर्म किस उपज ना आयो नै उपजी निर्मल करनी चाड़ सियानप संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पाव है सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाउ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिन्हें प्राप्त एहो निधाना जिनकै कर्म लिखा से बड़ भागी से

अवर लपटाव है, मर जन्म है मुग्ध गुआरा, अंध गुंग पिंगल मत हीना, प्रभ राख को राखनहारा, करण करावनहार समर्था।

देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहाउ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिव

लाग हर चरनी लागो जिस प्रभ अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश हैं

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहो अनग्रहो स्वामी मेरे मन ते कबू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उर तारो देव गंधारी महल।

काल रहाव। दुई कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्म मन त्याया, आप दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार, कहो नानक जन को बल जाइए, जो सबना करे उदार।

जब कितवो तब तुहारी उन समहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊ साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोर

इस आराधी जो दिसकै सो गाखै साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाचै जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुतर माए आचै आए पयो नानक गुर चरण तो उतरी सगल दुराचै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोह।

दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गाव है हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुल है समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश्वर पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन भेख मोहन रहत नराग।

चार बरन मुक्त भये देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया।

रहाल काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान कहो नानक पाए है परम निदान।

छुटकी रे मन छुटकी रे, काकत संग ना छुटकी रे रहाउ। जो काजर भर मंदर राखियो, जो पैसा कालू खीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा।

मद माया कै भयो बावरु हर जस नह उचरै कर पर पंच जगत को डहक अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नवा सब किस जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आदि करी को नह राखै घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवां जगत मैं।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तपी पाचहारिये अर बहु लोग सियानी रहाउ। तिन मह राउ रंक कौ करी राउ रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताकू व्यवहारी।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरनागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम।

0: पाया राम। वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुरपूरै गत मित पाया राम। गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम।
1: अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए,
0: इत जपिया पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जुग जाते राम। हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर तरनाते राम। अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा हौ बले।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

राम तिनका संग मल उतर मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्ण।

राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए।

सहस सियाणप नह मिला मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

पायो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधाते तुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निदहर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वडभाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर जी।

रंग मातिया लग संत चरनी पड़े सरनी मन तिना उमाहा बिनवंत नानक जिन नाम पल्ले थे सच्चे साहा नानक सोई सिमरिया हर जियो जाकी कल धारी राम गुरमुख मनुह ना विसरै हर जियो करता पुरख मुरारी राम दुख रोग ना पौ ब्यापै जिन्नी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे भव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिया प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगे है।

प्रभ त्यावै धन ते बडभागिया सुख सहज सोवह किल विख खोवह नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रिय बचन मीठे पाणिए बिनवंत नानक मन इच पाई हर मिले पुरख चिराणी तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदारनु प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु जो शरण आवै तिस कंठ लावै एहो बिरध स्वामी संदा बिनवंत नानक।

गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइये पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कह

पंजवा खोजत संत फिरह प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलहु प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपू स्वामी हर दर्श पेखे जीजिए समरथ पूर्ण सदा निश्चल ऊच अगम अपारी।

सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊच अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा महला।

तूं बलवंच लूक करह सब जाने जानी राम। लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम। किरत कमाणे दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया। तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईऐ, हों हों करतना तृष्ण बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछतानी तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गात मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ीऐ। हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनों त्याई दिया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ीऐ। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ीऐ। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ीऐ। हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठै जगत तरिया सब लोड़ीऐ। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का स्वाओ ना पाया। नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का नाउ वसारिया। नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाई प्यारिया पौड़ी। हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए। हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए। हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए। हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुबाए। गुर प्रसाद कह

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राह आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुआ हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक सरन करतार की करता राखै लाज। पौड़ी।

जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा, अनदिन सहज प्यार, सदा आनंद गावह गुण साचे, अर्ध उर्द उर तार, अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म

आई। गुर कै शब्द मन तन भिजे आप वसै मन आई। नानक नगरी पाईए आपे लय मलाई पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजे आपे ही बह पूजे करता। आप परपंच करीजे आप परविरत आप निर्विरति। आपे अकथ कथीजे आपे पुन सब आप कराई। आप लिप्त वर्तीजे आपे सुख दुख देवै करता। आपे बख्श करीजे। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए। गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम

आपे खांडवर भांड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे आपे भौजल आप है बोहिथा आपे खेवट आप तरे आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाइए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हौ मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाइए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा। नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होवे सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए।

खंडन, आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन, जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते, तू हर सुखदाता।

अल्लाह तीजा एक सतगुरु की सेवा करहें क्या करी हर नामे लगे प्यार नानक जन्म सवार ने अपना कुल का करन उधार पौड़ी।

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक इहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किस की धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप अपदेसै आपे

हर स्यों प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुगदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके मर जमे होए खुआर महला तीजा प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई।

नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौ पाल पौड़ी आपे अठसठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए हे नाम आप दयाल हुए भौ खंडन आप करै सब दान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द ऐस्यो चेतना लावै जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरै अहनस जलत बिहाए जो तिस भावै।

पावे, आपी सतगुर मेल सुख देवे, अपना सेवक आप हर पावे, अपने सेवका की आप पैज रखे।

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अन अंधार पाथर ले पूज है मुग्ध गवार ओहे जा आप डुबे तुम कहां तरन हार पौड़ी सब के हो तेरे वस है तू सच्चा साह भगत रते रंग एक कह पूरा विसाह अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाह सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाह संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाह सलोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझै

प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा विरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार आपे सूखम पालिए आपे पासार। आप एकांती होए रह आपे वड परवार

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहुरावन गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

थोड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मन मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मलाया पूरा सतगुर हर नाम त्याया रहाउ। ब्रह्मे वेद बाणी परगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने तामस बहुत अहंकारा किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरै संसारा गुरमुख ज्ञान रते जोग अंतर चूकै मोह गुबारा सतगुर सेवा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाई, नानक मस्तक जिस वडभाग, गुर की बाणी सहज बैराग, वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाए।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी मन वसाया।

गई ता सच वस्या मन आई सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाई वडहंस महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेज एक एको प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

मैं अवगण भरपूर शरीरे हौ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया हे मैं गुण नाही हौ क्यों मिला मेरी माया। हौ कर कर थाका अपाव बहतेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी। हौ क्यों कर पिर को मिलो इयानी जो पिर पावे सा सुहागण।

जिन तेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हों क्या करी दोहागण नित

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेश करी फिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा। सो फिर प्यारा मैं नदर ना देखै, हौ क्यों कर धीरज पावा। जिस कारण हो शिंगार शिंगारी, सो फिर रत्ता मेरा अवरा। नानक तन तन तन सुहागण, जिन फिर रावड़ा सच सवरा। हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण, तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभ मेरा। मैं ऊपर नदर करी फिर साचै, मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा। सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का, इत मार्ग भैने मिलिया। आपनड़ा प्रभ नदर कर देखै, नानक जोत ज्योति रलिया। जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा, तिस मन तन अपना देवा। नित पक्खा फेरी सेव कमावा, तिस आगै पानी ढोवा। नित नित सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन

आप खाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाउ लाख भगत जाको आराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा कट कट वस है जान है थोरा

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडाहंस।

ताते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता बड़ा हंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल तल महियल रहया पर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे बड़ा हंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

तेरा अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हौं क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण कौ रख लेता, हौं भई उडीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौं वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगै हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सब पूरे। मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली, फिर सर्व रहया परपूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कै लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच धुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाहना, धन पन वड भाग हमारा।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तमे लाइया एक तुझ ही किए राजे टिकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरा मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड मुग्ध।

जाए सहसा बुझै गुर बिचारा वड्डा साहिब है आप अलख अपारा तेरे बंके लोएन दंतरी साला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोयने की ताला स्वर्ण ताला कृष्ण माला जप हो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी, हर लीजै शरीर जमाए राम। अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा। हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगहा सुतियन, उभे करन पुकारा राम। उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मन मुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया। मन मुख संता नाल वैर कर,

आखी है और करना किछु ना जाई राम। जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों किस दी वडियाई आप कराई वरियाम न फुसती कोई। जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है दूजे।

आए जप हर हर नाम भिक्षे राम जप हर हर नाम कमल पर गास्ते हर नाम नमंग निद पाई हूं मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाद लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसते हौं जीवां सतगुर देख सरसे।

देव। हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम भउ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हरे आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड दाता, मैं अवर ना कोई, वडहंस महला चौथा, हौ गुर बिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुर बिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया।

हर आपे पुरख निरंजन सोई राम, हर आपे मेले करे सो होई राम। जो हर प्रभ भावे सोई होवे, अवर न करना जाई, बहुत सियानप लया न जाई, कर थाके सब चतुराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवर ना कोई। हर आपे पुरख निरंजन सोई। बड़ा हंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बनासे। सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास ग्रासे। जिनको हर प्रभ कृपा सारी, ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया। मेल

0: मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया,
1: जिथे पुस्त कलत्र कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया, तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई, मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई, जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम, निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर झूरे,
0: कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे, हर हर तिनका दर्शना करियो, जिन्नी हर हर नाम ना त्याया, जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया, हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम, गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करह भगती राम, हर हर सतगुर करह भगती, जा हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे, कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती, वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे हैं, सतगुर पास हर बात पूछे हैं, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे हैं नित करहे बेनंती, गुर सतगुर पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुख दाता, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा राम, जप हर हर नाम, लथ अड़े जग तापा राम, हर हर नाम जिन्नी अरादया, तिनके दुख पाप नवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे, हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते, दुख लाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख जप, सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत भये शरीरा, अनमिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन त्याया, इन परम पदार्थ पाया, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम, हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम, हर दयाल शरणाया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया, सतगुर भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम, वडहंस महला चौथा घोड़िया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देहे तेजन जी राम पाइया राम, धन मानस जन्म पुन पाइया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देहे सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावे, हर हर हर नव रंगड़िया, एहे देहे सो बांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया, ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਦੇਹ ਪਾਵੋ ਜੀਨ ਬੁਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ਚੜ ਲੰਘਾਂ ਜੀ ਵਿਖਮ ਭੋਏ ਅੰਗਾ ਰਾਮ ਵਿਖਮ ਭੋਏ ਅੰਗਾ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਹਰ ਬੋਹਤ ਚੜ ਵਡਭਾਗੀ ਲੰਘੈ ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਤਰਾਏ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਰੜਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਚਾਬਕ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਹਰ ਲਾਏ ਚਾਬਕ ਮਨ ਜਿਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ ਅਕੜੋ ਕੜਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੈ ਅਪਿਉ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਿਆ ਸੁਣ ਸ੍ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਬਖਾਣੀ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ਮਹਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਿਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਘੋੜੀ ਤੇਜਣ ਦੇਹੇ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਤਨ ਤੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਸਭ ਆਸੈ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਜੁੜੰਦਾ ਚੜਦੇ ਹੜ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮ ਲੰਘਾਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰੈ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਣੇ ਆਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ਵਡਹੰਸ

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी।

तब जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस मा

राम गुरमंत्र शब्द सच दीता राम सच शब्द ते आया मंगल गाया चूके मनो अदेसा सो प्रभ पाया कतह ना जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी भाणा सच्चा माणा प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तौ भाणा ता त्रिपत अगाए राम मन थिया ठंडा सब त्रिशन बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लगे हौ सतगुर कै कुर्बाना निरभउ भये खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक

0: तुद सलाही।
1: गुण अवगण मेरा किस ना बिचारिया,
0: बख्श लिया खिन माही। नौ निद पाई बजी वधाई, वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया। मेरे लाथे जी सगल वसूरे, सलोक क्या सुनेंदो कूड़, वंजन पवन चलारिया। नानक सुनियर ते परवान, जो सुनेंदे सच धनी चंत, तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम। ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम, से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए। भै बोहित सागर प्रभ चरणा, केते पार लंघाए। जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर, तिनका लेखा ना गणिया। कहो नानक तिन कोल कमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूं घणी। नानक से अखड़ियां बेअन्न।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याईये राम मन इच्छे अड़ा फल पाईये राम मन इच्छ पाईये प्रभ त्याईये मिट है जम के त्रासा।

पुरबकमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इत धंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाना आगै सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाइय नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म न

दूजी कार ना भाले आप नरालम धंदे बाधी कर हुक्म छडावण हारू अज कल करदिया काल व्यापै दूजे पाए विकारू जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंध गबारूआ ना जल लेप तुलाइया ना भोजन प्रकारू।

समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप

पिर नाले गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले फिर अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे इहो तन रुलै रलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा धन मिले मलाई तेरे अंतर सदा संभाले फिकरो वह पिरह विछुनिया।

आओ पौड़ी, तू आपे ही आप आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना भी।

ऐसे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट काम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

दुख मनाय। इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाय। शब्द रत्ते तिन्ना सूझी पई दूजे भरम भुलाय। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक जोतिस भावै।

ना हो गई, अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय, सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जितै हर का हर नाम बिलोइया, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोइया, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोइया, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोइया, तिस गुर को सब नमस्कार करहो, जिन हर की हर गाल गलोइया। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

करमी मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेवी शब्द वसै मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचो आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे जे सच रह लिवलाए चिंता मूल ना होवे हर नाम रजा आगहाय नानक नाम बिना नह छूटिया हौ मैं पचह पचाए पौड़ी इन्नी हर हर नाम त्याया इन्नी पायड़े सर्व सुखा सब जन्म तिन्ना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भुखा जिनी गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा धन तन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा श्लोक महला तीजा कल मह जम जंदार है हुक्मे कार कमाए गुर राखे से उभरे मन मुखा दे सजाए जम काले वस जग बांधिया तिसदा फरू ना कोई जिन जम कीता सो सेवी है गुरमुख दुख ना होए नानक गुरमुख जम सेवा करे जिन मन सच्चा हुए महला तीजा एहा काया रोग भरी बिन शब्द दुख हूं मैं रोग ना जाए सतगुर मिले ता निर्मल होवे हर नामो मन वसाए नानक नाम त्याया सुख दाता दुख विसरिया सहज सुभाए पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया तिस गुर को हों सदा कुमाया तिस गुर को हों खनिया जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया तिस गुर को हों वारन जिन हों मैं बेख सब रोग गुआया तिस सतगुर को वड पुन है जिन अवगण काट गुणी समझाया सो सतगुर तिन को भेटिया जिन कै मुख मस्तक भाग लिख पाया सलोक महला तीजा भगत कर है मर जीवड़े गुरमुख भगत सदा होए उन्ना को तुर भगत खजाना बख्शिया मेट ना सकै कोई गुण निदान मन पाया एको सच्चा सोए नानक गुरमुख मिल रहे

नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है जिन सेवया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है नानक तिन विकटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखियास पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

गई। हर का नाम गुरमुख किन्हें विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जा गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, पहना किसु ना जाए। महला तीजा, हम घर नाम खजाना सदा है, भगत भरे भंडारा, सतगुर दाता जी का सद जीवै देवनहारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्च रहै।

हर रतन है मुक्त करावन हारा। नानक जिसनो नदर करे सो पाई, सो होवै दर्श चियारा पौड़ी। तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाणे गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे,

आई तन तन सत पुरख सत गुरु हमारा जित मिले है हम हर भगत पाई। तन तन हर भगत सत गुरु हमारा जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। तन तन हर ज्ञानी सत गुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम पौ सब सम दृष्ट दिखाई। तन तन सत गुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला कर ही मुंद विदेश पेर नित झूरे संभाले मिल।

पौड़ी जिन उपाए जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिन्हें विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना

0: मन हर सरनी पड़ रही है,
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है, उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

एहो सी सोए। सबना दाता एक तू, मानस दात ना होए। जो तिस भावे सो थीए, रन के रुन्ने होए। धरती उपर कोट गाड़, केती गई बजाए। जो असमान ना मावनी, तिन नक नथा पाए।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हितकारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पाव है छूट है शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै बिरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

पियो। गुरमुख एक दृष्ट कर देखो, घट घट जोत समोई जियो। चल तो ठाक रखो घर अपने, गुर मिले एह मत होई जियो। देख अदृष्ट रहो बिस्मादी, दुख बिसरै सुख होई जियो। पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए, निज करवासा होई जियो। जन्म मरण भव भंजन गाईए।

नदर तुम्हारी अपने दासा नूं किरपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाउ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भौ भागा मेरा प्रभ साचा अत सवालियो।

पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रता एक रंगी, शब्द सवारन हारा। सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से भाई। गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही, तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी। मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर पाई। अवर ना दूजा कोई।

आप राख जो तेरे मन पानी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभै तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते केन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत ना

अंत गए पछताई। सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कह पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चल पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम भुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोय ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाण। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर। विचों आप गवाई है, सोठ महला तीजा चौथुके। सच्ची भगत

करनाई अपनी नदर करे पात राखै हर नामो दे वड्याई रहाउ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या ताज काम क्रोध अहंकारा।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिवलाई। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाई। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

कमावै है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावै बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै घरै अंदर सच पाई। सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुरु दाता मेल मलाव हो। हर नाम देव हो आधारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी। पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा। शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हाथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है सेई। सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजै गत मत तद ही पाए। हर का नाम सच्चा मन वस्या।

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहु, आपे वणजवा पारिया।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा जो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन भेदया हर बिन रहन ना जाई ज्यो मछली बिन नीरै बिन सै त्यों नामै बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देव हो हर नाई हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

नाही। जे को रखै लुकाई सब किश तेरा तू अंतर जामी। तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करह सो पाए। जन नानक अवर ना कोई सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके। एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हौ जाती किस आराधी। जा सब को कीता होसी जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकू रलसी निरभउ निरंकार भव खंडन। सब सुख नव निद देसी हर जियो तेरी दाती राजा। मानस बपड़ा क्या सलाई क्या तिसका मुहताजा रहाउ। जिन हर त्याया सब किस तिसका तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाता नखोटना कब ही जाई। आनंद भया सुख सहज समाणी।

दास पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निदान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी,

अज्ञान प्रगट भय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपहाई कहो नानक जिस भय दयाला ता को मन ते बिसर ना जाई सोट महला पंजवा सगल समग्री।

आद शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाई है।

पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा।

युग अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपनी मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया जे फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर बिसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रते ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सूरठ महला पंजवां।

संतन सिंह हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिंह मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

मन तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भान अंतर बिद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

मेरा अंध मंगल बिसरामा मन बाचत फल मिले अचिंता पूर्ण हो कामा इहां सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ पए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन कामना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाई।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भय बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोस्त ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ होआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी।

चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुरमिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माधो जिया संतो हो घट घट रहे समाह पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहो रहाओ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर परम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सोठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्यावो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडावो एह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बलावो अपनी बिद आप जनावो

गुरपूरा भेटियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरत महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु।

प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावे। सोठ महला पंजवा अविनाशी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कौ बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बहुड़े दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिनकी धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई। तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ। समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा। सोठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर।

अंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौरठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद।

मन जास गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

सो ही पावों अपने खसम भरोसा। कहो नानक गुरु पूरा भेट्यो मिट्यो सगल अंदेसा। चौठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना। सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी। मन इच्छे फल पाया मेरा गुरु पूरा सुखदाता। करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाओ। आनंद बनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक पये दयाला। जय जयकार पये जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारु नानक पात्रा की परमेश्वर उदरिया सब संसारु सोठ महला पंजवा मेरा।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अनदिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पतियाया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

कल राखी जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर।

पूरे गुर कृपा तारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया

जन्मा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही आयूरी गुरु चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया।

नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी सोठ महला पंजवा गुरपुरै चरनी लाया हर

कार्य सगल सवारी रहाउ मिन साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है, मन बाछत फल पाई, गुर पूरा हृदय त्याई, गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम त्याया, प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा, दह दिस शतर मेघ कटा घट, दामन चमक डरायो, तेज अकेली नींद नह नैन है, फिर परदेस सदायो।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

इस सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांथे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौ जल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश।

ते आया आद पुरख प्रभ पाया चोट महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दइये वसाया सुख सागर गुरु पाया ता सहसा सगल।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अवनासी ताकी सेवना बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

तू प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद

हर हर हर अरादो हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधो रहाओ प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया किन सर्व

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

होता। जो सिवरै तिसकी गत होवै, उदरहै सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी। बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया।

शंका वह पाई, वह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया। सोठ महला पंजवा, गुर पूरा आराधे। कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे। बाजे अनहद तूरे, संत हो राम जपत सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी। नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे। त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए। जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए। रहाउ ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

आओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा विसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी।

काल दीन दुख भंजन आपे सब बिद थाटी हिन मह राख लियो जन अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुर गोविंद सद त्याई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

निंदया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तैं खोजत उदयाना बहुत जन्म परमत तैं हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरत महला नवा मन रे प्रभ की शरण बिचारू जेहे सिमरत गनकासी उदरी तां को जस उरतारू रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहे निस्बासुर नह छूटी अधमाई साध

सखियन को तावत केहे बिदरू को ताहि रहाउ। वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावै पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच

पूत संबंधी सगरे तन स्यो लागे। जब ही निरतन देखो नर कौ संग साड सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को इनस्यो ने हो लगायो। दीनानाथ सकल पै भंजन जसता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक ला

बिंद सुख वास्ती नाम वसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

सुहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वडियाय। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान, आपे ज्ञान अगाम। जिन चाखिया से साध जानन, ज्यों गुंगे मिठियाई। अकथ का क्या कथिय भाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सत

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ भिख माया चित मोहया भाई कतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लालच लूल जे मन हर स्यों बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनो गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल में बूट है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़े पत खोय मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए फिर है बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

आपे बख्श मलाई, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाई रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारी, साचा शब्द विचार, भौजल पार उतारियन पाई, सतगुर बेड़ चाड़, मनूरै ते कंचन पे पाई, गुर पारस मेल मलाई, आप छोड़ नाउ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मलाई, हों वारी हों वार न पाई, सतगुरु को सद बलिहार जाओ, नाम निदान जिन दिता पाई, गुरमत सहज समाओ, गुरबिन सहज ना उपजै पाई, पूछो हो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विचों आप गवाई, गुरमति पहु उपजै पाई, पहु करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई पाई, सच नाम आधार, जो सतगुर सेव है अपना पाई, तिनकै हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाई, सच बाणी सच शब्द पाई, गुर कृपा ते होय, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिघन न लागै कोय। चौथ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे भाग मलाई, सदा सुख सुहागणी पाई, अन दिन रतिया रंग लाई, हर जी तू आपे रंग चढ़ाई, गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाई रहाओ, गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाई, सदा सहज फिर दुख ना लगई पाई, हरे आप बसै मन आई, फिर का हुक्म ना जानी पाई, सा कुलखणी कुनार, मन हटकार कमावनी पाई, विणना वै कूड़ियार, से गावह जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चै बैराग, अन दिन राते गुण रवह पाई, निरपहो गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मनो वसारी है पाई, जिस दी वट

भाई मिल प्रीतम साच समाव। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुह देसी जाय। किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई। नाम संभाल है सुख वसह भाई सदा।

पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपनी दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निध भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पीटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होए नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होए परगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ पाई सर्ब कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई

जिस प्रतीत न आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हऊ तिसके बल जाओ। वो निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसर भाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी। तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी। माया मोह बधाया जिसनों की तो कर्म आप प्यारी।

हार प्यारी अंतरजामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारी जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारी तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारी तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंचाए उलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संगना की जई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काले उठ जाय मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाई जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाई संजम सहस सियान पा प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भव जल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिसका तान तिस सरनाई टह पे प्यारी जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरे प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पोंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका।

कर पाती रहे हो, नगन फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरै एह बिद जे

पुरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी राव।

जां हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफले हो सतगुर।

सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना ये गुरमुख मिल है सुपाई।

जे अभिमान करहे विकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगिया फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहार।

जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत ताज बिक संग्रह करतै आप खवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा। श्लोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है,

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आय। नानक जो गुर सेव है अपना, फौतिन बलिहार जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाय। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याय। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अट अट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमें परम पलाय। गुर प्रसादी भउ पया, वडभाग वस्या मन आय। पै पय मन वस हुआ, हमें शब्द जलाय। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाय। सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाय पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से बदे दुख सहाय।

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यो छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया ते दरगाह पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को बल

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवै हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह सुमाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भउ करे।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मेता तिस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोहे द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चै शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाहे प्यार नानक नाम रते सहजे रजे

आई नानक गुरमुख मिला बड़े आईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी।

मन तन आगै राख कै उभी सेव करे। यूं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली। नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करी। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया। एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया। गुर सतगुरु

पिच्छा सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया।

परमात है अचिंत करे जिस दात। नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी। हम ढाडी हर प्रभ खसम के, नित गावह हर गुण क्षमता। हर कीर्तन करह हर जस सुनह, तिस कवला कंता। हर दाता सब जगत पिखारिया, मंगत जन जनता। हर देव हो दान दयाल हुए, विच पाथर क्रिम

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखध खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाय नानक हो बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द शुद्ध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार साक सुध साक लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैण सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिलै ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी रहन दिन सप्रभात।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहि। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। सलोक

ऐ नाम उपजे किसना भुख सब जाय, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा, सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया, उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया। उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ, क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया। जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा, कूड़ बोले किसे ना पावे,

पौड़ी गुर सच्चा बताते हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर कृपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी कृपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म हुआ हासल तदे हुए लिबड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नाक नाथ खसम हाथ किरत तके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्लां आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जंत उपाए आप प्रित पाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगता सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वडियाईया दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाए आपे

तेन निज कर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भूतपूर्व

परत है या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस।

ना जाई। हमरा भरम गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाउ बाजीगर डंक बजाई, सब

गुरु राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर मई।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो धन पाया, हर भेदत आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई। कह कबीर अब जानिया।

कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतल है मलना, रहाउ लौकी अठ सठ तीरथ नाही,

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

तह अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह कास्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेखै ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत पुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी।

राखै जां सोए। जह देखां तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाहीं जाय। जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुण उठ चल।

कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चेतन।

काती कूड बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी को जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी तामी तह नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया का धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोर।

जिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनों मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिं को, होए जाते तेरे नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एहो तन अखोट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को साध बल जाए, गुर कृपा ते हर मन वसाए। से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया।

एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आय, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद होए दिन राती।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दाजह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

सत तृष्णा अग्न बुझाई अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणे चले ता आप जाए साच महल पाए।

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

कमावे ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेख आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नाम की कीमत मित कही ना जाए, से जन तन जिन एक नाम लिव लाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पा।

बहुत अभमान अहंकार डूबै न पावे मान पाप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है।

ले गुर पर साथी जानिया साथी लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

हर उड़तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हौ मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरखे अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

नित तीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गत में तो कह ना सकह प्रभ हम क्यों कर मिलह अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बाणी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुटकाकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपेहो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगाह पावह फिर जन्म नायावह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बन आई, बहु चिंत वसारी, हर नाम उर तारी, नानक हर पये है सखाई, तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लेख, हर जप हर गाओ, हर पौ जल पार उतारी, मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट, इव भण हर नाम मरारी, मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होए दिन राती, हर कीरत कर बनवारी, रहाओ हर हर करी दृष्ट, तब पयो मन उत्तम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पात राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है सन तुम्हारी, तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध, तेतीस कोट मुन जन, सब चाह हर जियो तेरो नाव, गुर प्रसाद को विरला पावे, जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ, जप मन रामे नाम, हर जस उत्तम काम, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, हम किन कह सद बलिहार जाओ, रहाओ सरनागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हों पाओ, दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ, तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे है, सब गावे है हर हर उत्तम बाणी, गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तेना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

प्यारी सब तुझे त्यावह मेरे साह ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

तेरी, तू अबनासी पुरख मरारी, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन दुआरी, तनासरी महला पंजवा, दिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो,

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई प्राप्त वस

सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, इहो नानक कीनो चोलाहा।

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ भस्म संगीत अमृत संग ना।

आनंद राज पाई, मुकते निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। तनासरी महला पंजवां, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर।

ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन ओह चलत दिखाया। गूजी पाहे जले संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर ले आया खाते। तनासरी महला पंजवां, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमे अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना।

निर्मोल का हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी मा

हमरा मीत सगल समग्री जियो ही हो देव हर पौ अपनो चीत रहाव पार तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे।

होवा। निंदक भागे हार भ्रमत भ्रमत ऊहा ही मुए बहुड़ ग्रह ना मंजार। नानक सरन परयो दुख भंजन गुण गावे सदा अपार। निंदक का मुख काला होवा दीन दुनिया कै दरबार। तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाओ। गोष्ट पई साध कै संगम काम क्रोध लोभ।

मन एक है। मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागू राम सिंह हित सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का काटे अकेत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर।

कर बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आरादी नानक सद कुर्बान राग तनासरी महला।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा।

वह एकत्र तह हर जस गा वह नाथ कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाउ पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किनै ना दुत्तर भाखे।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भव जल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाली तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित।

कर आई, संत अनुग्रह भये मन निर्मल, नानक हर गुण गाई। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताके, जाका सतगुर पूरा।

ही धनासरी महला पंजवां जतन करै मनुख डहकावै ओह अंतर जामी जानै पाप

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत भय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण।

रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहु जात सत।

प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी। एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त। साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का। पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती। रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

सब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

स्वामी कोए न पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत शार करन हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काढ लेव हो रहाउ काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो तनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरल समरथ अकाथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्भक पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहो निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रिभवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी, अनक जतन कर काल संताई, मरन लखाई मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवै, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवै, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई,
गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आई जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे।

ना बहु भीख है कड़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पहु भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बन वासा परमत डोलत भये उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आद जगाद सहज मन धीर पल पंकज महकोट उधारी

पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करै सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे।

आप पूरा नावण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वड़े आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला।

लेखै आपे सुरत बुझाय। नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाय। तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो। हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना। आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा। सच्ची वडियाई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह बाद वधंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा। भगत सोह है दरबार शब्द सुहाया जियो। बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे। पारस परसे है पारस होए जां तेरे मन भाणे। अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी। भूख प्यासो आत क्यों दर जाए सा जियो। सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो। सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन।

सत संगत मिला वड भाग ता हर रस आवे जीओ दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हों मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लेहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक

तप कर बहुर ऐबो क्या मांगो किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाओ शोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इन्ते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अडकाई रहाओ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई। इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गनका पतत कर्म कीने तेऊ पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई। राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही। गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई। जिन त्रिण तार मूंड बलाई हमरू करता राम स्नेही। काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई। बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई। दुर्बासा से करत ठगा।

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइय, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइय, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बालहा।

रहाउ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे पवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मफीत सरी अमृत ससी ढेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सनागर नदी के नाथं कर्म कार खार मफीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाऊ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाऊ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

लायो गुर साधु गुर मिलिया हीर पराखा रहाउ। मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जन नीके

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा धार दी।

सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाऊ धन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर अमृत बचन सुनावहु गुर मिलिया प्रगट होई राम मधुसूदन हर माधु प्राणा मेरा

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल

था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखियै सुहागन सांत बजहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां धीरों सुन धीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुरु प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मह दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रस मह मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चातरक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर प्रेम।

लाड़दास जाने अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन

को त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रयह बे सखियां, मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया, हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा, जिन्नी मैंडा लाल रजाया हों तिस आग्या मन डेहिया, नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया, यार वे पेरे आपन पाना किसनी शीशंदा, यार वे तैरा व्या लालन मूं दस दसंदा, लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हों किदी, गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई, जिस संग पता

आई महामंगल रहस थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महल।

असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलीऐ मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी घूलीऐ लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काड पव जल फेरिया। सलोक निरत न पवै असंख गुण

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत

अध पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अग्नाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन में दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर में।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटुंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाऊ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

बंदा वै त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं। सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत। नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवे बाहरा। नानक आसड़ी निवाहि सदा पे खंदो सच धनी पौड़ी। आसावंती

सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सत बलिहारं जिन्ना ध्यान।

परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

पाईऐ वड्डै पुन्न। आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक, दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिन्हें उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया। कोट अगा गए नास हर एक त्याया, निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया। ना

पाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल विखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया।

गुरप्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न भवजन फेरा रहाउ। मेरा ही अरे लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर

कही है। तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया।

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यों मृतक ओढ़ाया रहाओ ताई ताई।

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां, कृपा निद बसो हृदय हरनीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाऊ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुरे आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाऊ।

पाव है। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहू ते छूट है। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत

एक कृष्णाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाव रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास

बैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गिह लड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महाराज री मायो दीहर न्याई मोहे फाके ओरे रहाओ कणो कणो कणो सद लोड़े बिन लहने कैठे पायो रे महाराज रोगाथ बाहु स्यो लुबड़ो निह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहनो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गह्यो मोहे हर रंग पीन पेख्यो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बात घाट तोसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे।

सदा हजूर, जो तुमरा जस गावह करते, से जन कभो ना मरते चूर। तंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के, बिन हर नानक जाने कूर।

रंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पै

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुआ दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी। टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देवरा मह जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई। एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछे रहाओ कुंभार के घर हांडी आछे। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछे। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछे। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसे। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछे।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुख दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पाव है भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गाव है राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गाव है सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेठे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाउ जो

हरि आपी पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदा।

उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत छावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्ब कल पूरा, किस कीमत कही ना जाए, नानक शरण तुम्हारा।

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजिया बामना की गल थकी, अगद पढ़े शैतान वे लालो, मुसलमानिया पढ़े कतेबा, कष्ट मह करह खुदाई वे लालो, जात सनाती होर हिंदवानिया, एह पी लेख लाए वे लालो, खून के सोहले गावी है नानक, रत का कुंगू पाए वे लालो, साहिब के गुण नानक गावे, मास पुरी विच आख मसोला, जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेख वख अकेला, सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याओ करेग मसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला, आवन अठतरे जान सतानवे, होर पी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला, तलंग महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी, सच साहिब साचा खेल सब हर तनी, सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी, जिस नाही कोई शरीक, किस लेख हो गनी रहा, पौन पानी धरती आकाश, घर मंदर हर बनी, विच वरतै नानक आप, झूठ कहो क्या गनी, तलंग महला चौथा, नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया, जब आने बलवंच कर झूठ, तब जाने जग जितिया, ऐसा बाजी सहसार, ना चेतै हर नाम, खिन मह बिनसै सब झूठ, मेरे मन त्याए रामा रहाओ, सावेला चित ना आवे, जित आई कंटक काल ग्रसै, तिस नानक लई छडाई, जिस कृपा कर हिरदय वसै, तलंग महला पंजवा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खाक नूर करदं आलम दुनियाई, असमान जिमी दरख्त आब, पैदाइश खुदाई, बंदे चश्म दीदं फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी, गाफल हवाए रहाओ, गैबान हैवान हराम कुस्तनी, मुर्दार बखोराए, दिल कब्ज कब्जा कादरो, दूजक सजाए, वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी, तब चेकारे बिदाए, हुआल मलूम करदं, पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास, पेश दरवेश बंदा, तलंग कर दूजा मा।

नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कहो बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर। संत

दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया सदा एक सगाव तलंग महला पंजवा मीरा दाना दिल सोच मोहब्बते मन तन बसे सच साहा बंदी मोच रहाओ दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल पाक परवदगार तू खुद खसम।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे।

आओ संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जप हो तब मथिय इन बिद अमृत पाव हो। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

आई नानक कामना आवई जित तन नाही सच्चा नाम। सूही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडै जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुंडी मूंड मडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है। गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर समसर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुलाव।

मन राम नाम अराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस मान है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारी, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

वै शारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचिए भाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिए होरत है होरत उपाय हर तन कित ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

किसै का गवाया ना जाई, हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी, जम जा गाती डंड ना लगाई, साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया, तिना एक विख नाल ना जाई, हलते विच साकत दहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलट साकत, हर दरगाह ढोई ना पाई, इस हर धन का साहू हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे। उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक।

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत्यान सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाईऐ मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवें बलावै रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई इकना सतगुर मेल सुख देवह एक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाई, ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाई, मेरे राम हर जन अरोग पये, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाउ, ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण रोगी, विच हम मैं कार कमाई, जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी, हर गुरमुख सूजी पाई, हम मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हौ बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे वेख हर बिगसै।

खुद श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ। इकना सतगुर मेल तू बुझावह, एक मनमुख करह से रोवै। हर की वडिआई हौ आख ना साका,

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत हुई। सूही महला पंजवां, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाहीं कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया परपूर,

आवे सासुहागणी अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रहण बिहावे।

पंजवा ग्रहवास गुरु की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुण कंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाऊ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

पई लरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली जागी, हिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

शाम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल।

करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाई जो हो रे ना जिसे

जप तप संयम देउ जतीरी, एक निमख मलावहु मोहि प्राण पतीरी, मान तान हम्बुद हतीरी, सा नानक सुहाग वतीरी।

आई जा कहो बिन सतबार ना काई। इह सुपना सोवत नहीं जाने अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाउ। महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा। ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा। दूसर

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी।

पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभु चरण कमल रे दमाही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखन संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

आस हर सेती राती राम रसायणी अन दिन माती बाहां पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी कर कृपाली ने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सूही महला पंजवा।

माला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जप नाला नानक जाचे संतर वाला सूही महला पंजवा किस बिन

अल्लाह पंजवा दर्शन को लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना

कियो सगल कौ फिर लपटाओ। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

रहाऊ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया। कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया। अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया नानक गुर मिरिया। बहोर नाम

आया, पुरुष है आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया गृह अंध को पाया, पावक सगराया गही ओट सधाया, नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया, राग सूही।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई जिसनो हो ही दयाला।

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह कट कट नानक माझा। सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रभ मान है। वे राम नाम रंग राती तिनकी शोभा सबनी थाई।

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नजर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सी।

सेती राते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवां।

आऊ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कहो बल जाई अमृत बचन हृदय उर धारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई।

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटै कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय भावै प्यारा तै रवेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जीओ, विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मित्रा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

रखै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है मेलह तुझह रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखह आप देह सो पाई है तू देखह थाप पथाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कित्थे घर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध घोर कब महाई है गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है ज्यो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर दे खालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही

किया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख।

तीजा घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाम ही ते सब किश होआ बिन सतगुरु नाम ना जापै गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरु

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

तृष्णा यज्ञ बुझाय गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहिया समाय हर का नाम सत कर जाने गुर कै भाई।

जो मर खाक थी। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन, तिस ना भूख ना उतरै अन दिन जलत फिरन।

पैर करन आप डूबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा भली किसै की नाही मन मुख मुग्ध करन मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवह तैसा होवह तेहे कर्म कमाए।

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन दिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप धनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे, हम मैं शब्द जलाए, सो

सुतिया गुर सलाहिय उठदिया पी गुर अलाव कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के धुआ पाव कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए सतगुर मिलया हर पाया मिलया सहज सुपाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ ज्यो मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

पुरख सुजान सतगुर मीत मलाया मैं सदा सदा तेरा तान सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मैं रहया समाय राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास नानक दरगाह मन्या गुरपूरे साबास राग सूही अष्टपदियां महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहयो बिख्या कै संगा मनह व्यापत अनक तरंगा मेरे मान अगम अगोचर कत पाई पूर्ण परमेश्वर रहाओ मोह मगन में रहया व्यापे अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना टुटई।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूई महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी।

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुर पीवै कृपाल कित्ती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किल विक मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया परपूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्ब लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम नदा

वही बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख न पाइन मूल नाम विशुनिया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बिचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया, खोजे है कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे, विसरना ही दातार अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह, राग सूही महला पहला कुचजी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कुचजी अम्मावन डोसड़े, हऊ क्यों सहो रावण जाऊं जियो, एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो, जिन्नी सखी सहो रावया

आस जियो तू सहु अगम अतोलवा हौ कह कह कह पई आस जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन पू

जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए।

सी चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

गुण सार न जानी भरम पलानी जोगन बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता पिरका सहज ना पाया सतगुर पूछ ना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन पिर तन कुमलानी बाबा मैं वर देहे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंत रवै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैल विस्ते नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम पी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी नाओ नरह नेह केवल रव रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए बछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे घर पेई बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर पिर रावी घर सोही बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परधानी।

आदि हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

हर नाम रतन परवानु पात मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जाती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनासी।

ता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले परपंच मोह बेकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसे भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्याहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोह, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोह लड़ा हर त्याहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाई, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पहु भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तेने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाई, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा, राम नाम प्यारा।

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख ना लागे आई, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई, नानक

मन निर्मल हर जियो वेखह सदा नाले नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले मन मुख भगत करह बिन सतगुर बिन सतगुर भगत ना होई राम हउमै माया रोग व्यापी मर जन्मह दुख होई राम मर जन्मह दुख होई दूजे पाए परज बिगोई बिन गुर तत ना जानिया भगत विहूणा सब जग भरमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत खोई भगतां कै कर कारज साचा हर गुण सदा बखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन भाणे नाम निधान सच पाया सदा अखोट कदे नान खुटे हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै शब्द सुहाया नानक आपे बख्श मलाए जुग जुग सोभा पाया तू ही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहिला जिते सच्चे का हुए विचारो राम हउमै सब किल विख काटे साच रखिया उर तारे राम सच रखिया उर तारे दुत्तर तारे फिर भवजल तरन ना होई सच्चा सतगुर सच्ची वाणी जिन सच बखालिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखै सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचै सतगुर साच बुझाया पात राखै सच

निवासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावह तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सोहै दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई।

शब्द रवहो अन दिन शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए हर गुण गावह नारी अन दिन भगत करह गुर आग्या सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहला हर कर किरपा घर आए भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल होआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे घट घट शब्द सुमाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाए नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत स्यो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये।

हम संभाली गुर शब्द राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम। तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए। अन दिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गुआए। गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ, नानक कृपा तारे सोहे लड़ा हर राम नाम, गुर शब्दी विचारे हम नीवी प्रभ अत ऊंचा, क्यों कर मिलिया जाए राम, गुर मेली बहु कृपा तारी, हर कै शब्द सुपाए राम, मिल शब्द सुपाए आप गवाए, रंग स्यों रलिया माणी, सेज सुखाली जा प्रभ पाया, हर हर नाम सुमाणी, नानक सुहागन सावड भागी,

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारू राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारू राम इकना मन आधारू सिरजन हारू वड भागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म बिचारू घट घटे सबना विच एको एको राम पतारू राम गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल।

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अनदिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हों मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई। नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई। हो पूछो अपना सतगुर दाता किन बिद दुत्तर तरिए राम। सतगुर पाए चलो हो जीवत्या इव मरिए राम। जीवत्या मरिए भौजल तरिए गुरमुख नाम समावे। पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिवलावे। मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुर मैं मेले प्रभ गुणतासे। तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आव हो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया। नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भुख लगाया। अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा मारे हिस वे जन हों मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया। इन हों मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा। इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हों मैं छुटिया बस आने हो वे जन। इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया। नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो। मन आस पूरी हर चौधिया जन नानक प्रभ देहो मत्ती। साडे आसा नित सुख सौंदिया।
सात अन आसा चित करे राम राजिया हर प्रभ से जड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया कर कृपा लिहो मलाई मेरा मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर सरदा सीज विछाई जन नानक हर प्रभु पाणिया राम राजिया मिलिया सहज सुभाई इकत सीजै हर प्रभु राम राजिया।

हत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाईऐ भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भग

गर्व गवानो निश्चल हब जाना मिथ्या मान संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिय भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक सरन पया हर द्वार हो बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जान प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आदि जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा।

तैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित

नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याई सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया।

जी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

जीवन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लाख लाख लाख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु त्याई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम त्याए फिर

हर गुण निधि हर संतन कह वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल कल मही अल पूरन स्वामी।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है चरण चल है प्रभ मार्ग राम भव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस तारग राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा

प्रभु परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया। करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया। सूही महला पंजवा, पै सागरो पै सागर तरिया। हर हर नाम त्याए राम, बोह थड़ा हर चरण अरादे। मिल सतगुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिए बहुड़ ना मरिए। चूकै आवन जाना, जो किश करै सोई भल मानो। ता मन सहज समाना, दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै। सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर ना

संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आपनड़ा मन आग्या धरिया, सर्बस ठाकुर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदर थित पाई। अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा, विछड़ कबहू ना जाई। सावड़ भागन सदा सुहागन, राम नाम गुण कीने। कहो नानक रवह रंग राती, प्रेम महारस पीने। अनद बनोद भये नित सखिए, मंगल सदा हमारे राम। आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी, शोभावंती नारे राम। सहज सुभाए भये कृपाला, गुण अवगुण ना बिचारिया। कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उर धारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारी। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारी। गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रविया, सर्ब मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिगसे, आप लय मलाए। सूही महला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए। करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्ब सुख पाया। पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर। कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी। जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे। जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम।

मते आए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नास्ती शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवै हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे है तह जन्म ना मरना आमन जाना बहुड़ ना पाई है जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद

कीजै बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निध स्वामी वड भागी हर हर गाया।

फिर मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यों टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यों रंग मजीत सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसर गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हमें मार मन निर्मला हर नाम पुरधारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन फिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले धन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजै पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हम मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सुहना भेटिया कृष्ण मरार पौ भाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर

तू पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

ऊपर जालिए नाम मिले आधार अहनस नवतर निर्मला मैला कबहू ना होए नानक एह बिद छुट्टी है नदर तेरी सुख होए महला पहला इको कंत सबाइया जित्ती।

विकार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतरस पार महला पहला शब्द साधना आयो।

नानक गुप्त समाल एनी फुली रौ करे अवर के चुनिय है डाल महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन घर वसया कंत जिनके कंत जसापुरी से अहनस फिर जलंत पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अन दिन सेवी गुण रवा मन सच्चै रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने ना लखनी सतगुर चरनी लगिया हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब घरे विच जचनी सलोक महला पहला पहल बसंत आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्या है सब मौली है किसे ना मौल्यो हो कोई महला दूजा पहल बसंत आगमन किसका करो विचार नानक सो सलाही है जे सब से दे आधार महला दूजा मिले मिलया ना मिले मिले मिलया जे होए।

परे वहो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस कौ शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्म बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कौ तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदार।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे ना अंतर राख, अवरा देख ना सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहो रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते। तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब। मैं अंधले क्या चतुराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा। मैं अकथ ना जा।

रहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावां तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावां नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात ना हुई एक एक नाही पौ कोई करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूझे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहज त्यानी हर कै रंग रत्ता मन मानी मन मुख परम भुले बोरानी हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सकै खिन सत गुर बूझ बुझाई रहा मेरा प्रभ बिसर हो मरो दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करनी क्या कार कमाए हो मैं मेट चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़ै खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नाम धन रास बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कतंब सहत सियों जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे पहला जन्म गवाया दूजा भाऊ ना देई लिव लागण जिन हर के चरण वसारी

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन चलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हम मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल शिंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल जिन चाख्या तिस आया साद ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बलावल महला पंजवा सर्ब कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जिते किते दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बलावल महला पंजवा सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे नाथ तुमरी सरनाई।

पूरा कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूकै जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है।

पापक नेरे पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे बलावल महला पंजवा विखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकती ही काई साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख न पाया धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बसो वड भागनी सखिए संता संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक तिहाइए दृष्ट धार मन बेदया प्यारे रतड़े सहज सुपाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

बहु तपत व्यापिया शीतल भये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

मिलै निस्तरीय बिलावल महला पंजवां गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरे आणिया, बिलावल महला पंजवां। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवां। कर चौथा दुपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे अधीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव, अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी। कहो नानक जप जीवे ज्ञानी, बिलावल महला पंजवां। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद सम्हारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे पवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव, साध संग भजियै गोपाल। गुण गावत टूटे जम जाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल।
नानक जाचै साधरवाल। बलावल महला पंजवा। मन मैं सिंच हो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम हृद माहि त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार, रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिसे आगे ही मारे करतार। नानक दास तां की सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवा। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग, रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली। तेरा मन तन अरोग, गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सधारे शतरपत संतन कै ख्याल। रहाओ हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल, बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल। सत वचन साधु कह नित जपह गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख, पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ, अमृत गुण चीन। रहाओ जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा बड़े आईया नानक गुरपास। राग बलावल महला पंजवा। घर पंजवा चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार। बिन सतबार ना लाग गई, ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे, सत देख बीचार। सिद्ध साधक गिरही जोगी, ताज गए घर बार। रहाओ जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बलावल महला पंजवा। लोकन कियां वड़ियाईया, वैसंतर पागों। ज्यो मिले प्यारा अपना, ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल हुए, तो भगती लागो। लपट रहे मन बासना, गुर मिल एह त्यागो। रहाओ करो बेनती अत घणी, एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया, निसबासर जागो। सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो। कहो नानक तिन पाया, तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवा। लाल रंग तिस को लगा, जिसके वड भागा। मैला कदे न होवई, नह लागे दागा। प्रभ पाया सुख दाईया, मिलिया सुख पाए।
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जानै जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई। जित सेवै सुख होए कना मन सोई गाइय। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता।

माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवां, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंदले त्रिपवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता रहा। ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

तुम मिलहु दयाल। निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागोह पाल। मोको दीजे दान प्रभ संतन पागराल। उकत सयान कछ नहीं नाही कछ काल। परम पै राखो मोहते काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। अलावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाए। तुमरी कृपा ते छूती है बिन सह अहमेव। सर्व

रहाउ। खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन साकूर। जित जित लाव हो तित तित लग है, स्यानप सब जाली, जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना बड़ भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवां गुन गाए। बिलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै, कल मल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया, तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाउ। हर रस चाखत त्रापिया, मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट पई, उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए, सब बूझी तृष्णा। दह दिस धावत मिट गए, निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया, पई भ्रम पसना। नाम निधान नानक सुखी, एक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै, तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारिया, अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा इस चरणी लाग, माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाउ। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा ओढ़ नग्न ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है, अद विचों टूटे। हर जन की सेवा जो करे, इत उतह छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई। दर्शन भेट तसाद का नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, सर्वनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो। संत चरण कर सीस तार, हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ, एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणुका, ले माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर, बिनो बलावो। पाव मनोवा आप त्याग, संत संग समावो। सास सास नह विसरे, अनकत है ना तावो। सफल दर्शन गुर पेटी है, मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया। जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ। सरन परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक सिदर मन मैं ढके निर्मल दृष्टि। क्यों बिसरै प्रभ मने ते जिसके गुण ए, प्रभ ताज रचे जे आनस्यो सोरलिये खे रहाउ। सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे, छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े ने। जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये, कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुर ते मत ले। ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने, दास दास को दासरा नानक कर ले। बिलावल महला पंजवा, एक टेक गोविंद की
त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरनी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाउ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमारे करनहार जो कर रहया साई वड्याई गुरपुरे अपदेसिया सुख खसमर जाय चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधक

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हारना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

तरे कुल कटंब उधारी सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारी नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सर्ब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यों तू राख है त्यों रहा प्रभ अगम अपारी कर्म कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ बलावल महला पंजवा कमन कमन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं बसास तू महा उदमादा खर का पैखर तौ छुटे जो ऊपर लादा रहाउ जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमर है नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना बलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम कथा कीर्तन।

पीरी ते हस्ती करै टूटा ले गांडै अंडज जेरज सेतज उत्पुजा प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर्ब फल।

हारे राखिया अपनी करमया रहाऊ बाहा पकड़ प्रभ काडिया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे तां का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ तां की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई

रंग नानक सरन लागे बलावल मोहल्ला पंजवां जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना पये प्रसन्न गोपाल राय पाओ किश नहीं करना दुख ना लागे कदे तुद तो

समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर बलावल महला पंजवां सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ बलावल महला पंजवां दास तेरे की बेनती हृद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल भए हर हर नाम कीन रहाओ पूर रहो सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर बलावल महला पंजवां अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ जीयन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बलावल महला पंजवां मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ बलावल महला पंजवां गुरपुरा आराध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया टूटे जम जाल दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाओ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभ आप नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप बलावल महला पंजवां तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम पौ नाथा भ्रम मिट गया रव्या नित राम साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम नानक तिस शरणागति घट घट सब जान बलावल महला पंजवां रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहाओ बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास बलावल महला पंजवां मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता
शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास जन।

न रखण हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन

रोग मटाए जिवालियन जा कावड़ परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

सुख दाते, मिल संगत हर गुण गाए, रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख भंजन, मोहे चरण हृदय वसाए, सबहु तले तले सब ऊपर, ए दृष्ट दृष्टा।

दंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

सोई पल हमरै पेख नानक सुख चरनारै। बलावल महला पंजवां सुनियत प्रभ तौ सगल उदाहरण। मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाउ। संच बिख्याले ग्राह जतीनी अमृत मन ते डारन। काम क्रोध लोभ रत निंदा।

पूर रही दिनस अर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रत्न रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जां स्यो राच माच तुम लागे, ओह मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहे इंद्री रास प्रेरियो।

ऐठह ठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाऊ सहज समायो गुरह बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अपनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बला

सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचर्ज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरै मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाऊ, अन बोले को तुही पछान है। जो जीन मह होता, रे मन काय कहां लो डह कहें। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भय मन आनंद। आन न बियो करता, कहो नानक गुर भय दयारा। हर रंग ना कबहू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही झर परी है। एह निशानी सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ। जो देखै शिदर तो निंदक अमा है, भलो देख दुख भरी है। आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया। हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा।

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन। बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा। बिखिया मह लपटाए जरे, अंध कूप मह परे ओ प्राणी। परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा। गुर भेटै काढै बाहा परे। बिलावल महला पंजवा, मन तन रसना हर कीना। पए आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना। रहाउ इयानप ते सब पई।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड परताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही

पंजवां अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाऊ सरन सम्राथ अकात सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीश इहो पदार्थ बड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावन महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंद प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुरु सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु धूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहिया परपूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वह दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया। मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया। महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया। सरल परे

राखी पै भंजनी ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढ़े शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवे हर गुण है बखान मलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारी सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए।

बनी रहाउ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करहो कृपा ठाकुर अपनी बलावन महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ता का हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जा का किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जा को तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावन महला पंजवा राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवा दुपदी घर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईग है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर फुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ धराउ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाउ जो जो कीनो सो तुम जानियो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्श तन तूर पर हो रहाउ गुर को शब्द मेरे ही अरे बासै हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मान पावन दुबदा दूर टरो नानक के प्रभ तुम ही दाते

जन्म जन मुखे हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यो भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जानो हो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मनमोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद नदान नानक हर सेवा अवर सयानप सगले अकाथ बिलावल महला पंजवा।

पतचपावन प्रभ बिरद तुम्हारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर धन सुख तुम्ही हो मैं पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास चरण कमलन की पेक दर्श स्वामी सुख सारू बिलावल महला पंजवा आगै पाछै कुशल भया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी माया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलावल महला पंजवा बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी शरण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवा धुप दे घर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपह मेल लए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाउ ताज अब मान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए जप जप नाम तुम्हारू प्रीतम तन ते रोग खए महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए कहो नानक गुरु पूरा पेटे हो आवन जान रहे बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपूरे तब

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस घूटी है।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही ते नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाओ तीर्थ करे व्रत फुन राखे नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं जाको जैसे पाहन जल मैं राखे हो पीदे नाही ते पानी तैसे ही तुम ताहे पछानो भगत हीन जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावे बलाव।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले है वड्डी वड्याई, दुख काटे हिरदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार है साधार, बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप खाए हों मेटे, अन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावे, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी, अहनस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता, खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवे, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्ते, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है ज्योत सबाई, गुरमुख आपे लख लखैया, नानक दीन दयाल पए हैं, भगत पाए हर नाम समैया, बलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्यावो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया, मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया, जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, सरल परे से ही जन उबरे, ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ, पार अठारह मह चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुक हुए, मन अभमान विछड़ दूर गईया, हर गत मित करता आपे जाने, सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया, परम बैराग नित नित हर त्याय, मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार न पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पकार है, धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव पार बढ़ैया, नाम जपहो नामे गत पावहो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हम मैं जाए ता निर्मल होवे, गुरमुख परचै परम पद पैया, एहो जग वर्ण रूप सब तेरा,
जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह, जित पावै तित राहि चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया, जान की टेक हर नाम टिकैया।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। हिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन।

बिस्माद चख अनद पूर्ण साद नह डोलिय इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पे कह नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जा की महा बिखड़ी कार ता की मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई।

सार विखया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाहे गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखै मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ। दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने। क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत आकाश किए बैसन कौ थाउ, रात दिनंत किए पौ पाउ। जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा। तृतीया

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा,

मुख शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

सब सुज संयम साच पछाण तेरा सतरवर सुमंद किनारे अमृत मूल शिखर लिवतार डर डर मरे न बूढ़े कोए नडर बूढ़ मरे पत खोए डर मह कर घर मह डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द बीचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मन मुख भूले।

आई आख आख रही सब लिवलाई, जिस देवै तिस पल्लै पाई, अगमे अगोचर लखिया न जाई, गुर कै शब्द हर रहया सुमाई, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै, प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाई, बुधवार आपे बुध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मालक होए, दर सच्चै

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया काल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जां कै मस्तक लिखिया लेख तां कै मन

काय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

रह मुग्ध गुवार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाई। बलावल महला पहला शंत दखनी।

मन सुख सुमान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सोहा।

हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वड भाग गुर पूरै वेख लिया नानक हर लिव लाग संत मेरा हर प्रभ रावण आईया हों मैं बिख जागे राम गुरमत आप मटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरै वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुरपूरै प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरै हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम जिन वड भागिया वड भाग है हर हर पुर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागै वड्डै भागै कब मिलिया पूर्ण पति सहजे समाइया गोविंद पाइया देहो सखिए मोहे मते दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो भवन सुहावड़ा धरत सुभागी।

मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखणा हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे पंडहारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसे पावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत ना।

मोहनी मोहनी महा बचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए तीर्थ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु मैं नाम।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोहि सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

पियो सुख सागर प्रभ भेटे है नानक सुखी होत एहो जी ओ संत सुख सागर प्रभ पाई है जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गईये दोहचार नरसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिया हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रसक न्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जलह।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओह कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान न लागे दुख विचकार कमावनी दुख वरतै दुख आगै करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दू

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुवार पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहू तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहू भगत जना को सन्मुख होवै सो हर रास लए वे

हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर तन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवै, ता कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर तन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवै। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे,

का अपमान जिथे को वेख तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुर नो मिल मने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवे सो फिरे प्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लए।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

है भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाउ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी,

त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांदे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतम जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाउ आवत कछु न दिसै नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज बीचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारनी चात्रिक दुख पावे।

पहला जे मन चित आस रखह हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहे आसमाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सानिह फल आस सब बिरथी जाई रहाउ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छडाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरै कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविट सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, तां आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सुआओ होए ना आवै, कित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरै दुख सखासा, किसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश लै जप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह अमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

नाम हरि भज सदा दीवान। जो हर महल पावै गुरबचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दीसह मन मेरे सब बिन सजाहे, ज्यो रंग कसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगाह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत मिल पतत परवान।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइयै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइयै, मेरे मन हर जप हर नित पड़ैयै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ैयै, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइयै, हर एको बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखइयै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइयै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइयै, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धियइयै, जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा धियाए तू तुद ले छडइयै, गोंड महला चौथा।

मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावहु, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाऊ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता। भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहे हो संभाए ले, पग धार है सास लेख लै। तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले। अपने रहन को

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

माहे तिहाई, काटे अवकट जात कतह सहाय रहाउ। रंक राहु जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किस करे सो आपे करे। जा का अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवां, जां कै संग इहो मन निर्मल। जां कै संग हर हर सिमरन, जां कै संग किल बिख होहे नास। जां कै संग हृदय परगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जां कै नीत रहाउ। जां कै मंत्र हर हर मन वसै, जां कै उपदेश परम पौ नसै। जां कै कीर्त निर्मल सार, जां की रेन बांछै संसार। कोट पतत जां कै संग उधार, एक निरंकार जां कै नाम आधार। सर्ब जियां का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवां, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहिया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेत न रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा काय अंतर जामी।

नानक निस्तरीय गोंड महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुवाओ ताज अभमान जान प्रभ संग साद प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वड भाग आठ पहर गाइए गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीता निर्मल होए तुम्हारा चीता मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइय पुरख अपार रहाउ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटहै उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

बोधी जह हाथ रहाउ, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, पार ब्रह्म का करह वखियान, जोगी जति वैष्णो रामदास, मित नाही ब्रह्म अबनास, कर्ण पलाहा करह शिव देव, तिल नहीं बूझ है अलख अपेव, प्रेम भगत जिसे

गोण महला पंजवा संत का लिया तर्क बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोई जो निंदा तिसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गोण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहे निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शे।

नारायण साधु संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवां जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोहै साध संग जपै निरंकार निंदक कै मोहे लागै शार राम कवच।

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कुनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

लागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावै जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

राव पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सतगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सतगुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरै नर काम न आवे पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम काट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पांच तत मिल काया कीनी तत कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसै तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरै तरै ध्यान वाके हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ, ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ, ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨ ਕੋ ਖਾਟ, ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ, ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार न रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहा भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसे संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वाकै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाही ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्ण महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइये सूत बिना कैसे मणि परोइये कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइये साधु बिन तैसे अवगत जाइये जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपरे धोई घोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारे सोदे पांच पलीते है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात ना करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव तन अनाद भूखे कवल टहकेव तन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन के साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग नीका वन अन्न बाहर जो नर हुए है तीन भवन में अपनी खो है छोड़ है अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मृगाय प्राण तजे वाको ध्यान ना जाय ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाउ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी।

पीतल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़या आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरभर होई घर की जो ए गवाई थी हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाना हिंदू पूजै देहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेविया जह देहरा नाम सीत राग गोंड बाणी रविदास जीओ की कर दूजा एक ओ अंकार सतगुरु प्रसाद मुकांद मुकांद जपो संसार बिन मुकांद तन होए अवहार सोई मुकांद मुक्त का दाता सोई मुकांद हमरा पित माता जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मुकांद मुकांद हमारे प्राण जप मुकांद मस्तक निशान सेव मुकांद करे बैरागी सोई मुकांद दुर्बल धन लादी एक मुकांद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मुकांद जोग जोग तार उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकांद सेवा ताहू की गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै साधका निंदक कैसे तरे सर पर जान हो नरक ही परे रहाओ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार शिंगार समेत सगले सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे।

निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सूद साध बिचारिया कहुरव दास पापी नरक सदारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना अब ही कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नर हरी जीवन तलब नवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी कर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा भीतर रह निरासा तो नानक एक मिले इन बिद सागर तरिये जीवत्या इओ मरिये रहाओ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोड़ी मंगन कै ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखी चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाऊ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमुले ध्यान रूप हुए आसन पावे।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर मानक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत काड काड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाई, राम जन गुरमत राम बुलाई, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाय रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय, हर के लोग राम जन नीके, पागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनि ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन भावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है सेवड भागी, हृदय मन

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित नवाईए राम मोको हर जन कारे लाईए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाईए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाई है सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याई है सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है एक अपने सवाई आए बह गुर आगे जो बगल समाद लगाई है बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग है गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है से न कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम सुमारी राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारी रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारी हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारी जे वड भाग होवे ता जपिए हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राखे कंठ जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

भरपूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत ना आवस।

मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साखों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

तू सागर हम हंस तुम्हारी, तुम मेहमान कलाला, तुम देव हो तिल संक न मानु, हम पुंच है सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारी, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहिया, नानक कहन ना जाए।

बाजै जिहवा तोने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचै आनी घूंगर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक लचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंध पाले नार दी नर हर जान हदूरे हुंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सधाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महमा जा की गहर गंभीर।

माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाउ तन तन कलत मिथ्या बिस्थार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब।

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्तै, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, तां छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, तां तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संतोख।

सो भूखा रह, इस संग राचे सो कशु ना लह, इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

कह डोरा, कोट परगास न दिसे अंधेरा, पशु परीत घास संग रचे, जिस नहीं बुझावे सो कित बिद बुझे, जान न हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान, बिगस बिगस।

परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

होगा। खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाउ। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाले संग, पव जल तरिये प्रभ कै रंग, देही धोए न उतरे मैल, होमे व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ता का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम करे महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा,

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सहराचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर

करत तह हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिसे आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

में नहीं जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर बखाने रहाउ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जाने मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोरे आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपिया गुरु।

पाप सगल मटाए, मन किंडे से फल पाए। हो सावधान अपने गुर सियो, आसा मनसा पूर्ण होवे, पावे सगल निदान गुर सियो रहाओ। दूजा नहीं जाने कोई, सतगुर निरंजन सो।

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोए किसह अराध सदा सुख होए काहे भ्रम भ्रम है बेगाने नाम बिना किस काम ना आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाओ जो जो करे सोई मान ले हो बिन माने रल हो वह छे किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाई, गनन ना जाई कीम ना पाई, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहन ना जाई, साचे सच अलख अपेवा रहाऊ, करन करावन आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा करनीत, सच सहज सुख पावह मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, तिस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिदमाहे अराध।

कृपा होए। पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को की जय दान। कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी। राम कली महला पंजवां, एह लोके सुख पाया। नहीं भेटत धर्म राया, हर दरगाह सो बावंत। हुन गर्भ नाही बस।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न नवारी सतगुरु देव, सेवक अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिगियाड़ी लई निवार, तीन अवर्त की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोविंद, कर कृपा राखियो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद, रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, अंध रूप प्रग

जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारी, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बै संतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिरख श्यामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्बाना रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सधावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरदरा।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह।

सुबा सुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध घटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चांद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहे सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाहीं।

नखण एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदारै फवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना।

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुबदा दुख भागे, धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप, ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। पसम चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर भीख न पाई, बंधन बांधिया आवै जाए। बिंद न राख है जति कहावह, माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटै मेल मलाई, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए न

सत परूता जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गाते गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी। सुन समाद सहज मन राता।

जह सैला बिन हर राती मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचार आप डुबे क्यों पितरा तारे कट कट ब्रह्म चीने जन कोए सतगुर मिले ता सोजी होए गणत गणिये सहसा दुख जीए गुर की सरन पवे सुख थीए कार्य अपराध सरन हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरन ना आईए ब्रह्म ना पाईए परम पलाईए जन्म मर आईए जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहावे है दुखदा राते महल ना पावे है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख विरली।

पीजै चाड़ सपवन संघासन पीजै न्योली कर्म खट कर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

अंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया।

आवै, तीरथ भरमस ब्याध न जावै, नाम बिना कैसे सुख पावै, जतन करै बिंद किवै न रहाई, मनुआ डोलै नरके पाई, जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामै जियो जल बल जाई।

मन तन निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सच नाउ तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजो भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाउ हऊ मैं गर्भ जाई मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द।

मरन भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यो हेत वधाई की नाम विसार है भरम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागै नाम बसारियो आवत जावत जन्म गया जां जम धाई केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया जां आए तां तिने पठाए क्याले तिने बलाए लया जो किस करना सो कर रहया बख्शन हारे बख्श लया जिन एहो चाख्या राम रसायन तिन की संगत खोज पया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ सरन पया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत पया आप मार गुरमुख हर पाई नानक सहज समाए लया राम कली दखनी महला पहला जत सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई

अनक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राखै सतगुर शब्द विचारी सिंह सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी पर पंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल जोत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

जोग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाई गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निध पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही।

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारी हम मैं तृष्णा मारी

अहंकारी जिच्चर अंतर सास तिच्चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किछ करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई तिसह सरेवो तां सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई आपे मारज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई इकना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहे हो संतो तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई न्याओ तिसै का है सद साचा बिरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

पावै नहीं सीजै, कार्ज सबरै मन प्राप्त आइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत

कर मारी गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवां काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याय काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाए संत बिहावै कीर्तन गाए काहू बिहावै दिन रैन चालत काहू बिहावै सो पिड़ मालत काहू बिहावै बाल पढ़ावत संत बिहावै हर जस गावत काहू बिहावै नट नाटक निरते काहू बिहावै जिया एह हिरते काहू बिहावै राज मह डरते संत बिहावै हर जस करते काहू बिहावै मता मसूरत काहू बिहावै सेवा जरूरत काहू बिहावै सोदत जीवत संत बिहावै।

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आद जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाईए पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जनारे नारी राम कली महला तीजा आनंद।

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजू क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

भगतः तेरी विखव मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्योहो तिखी वालोहो निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग नराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू ऐ हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा। मरन मनो वे सारिया।

जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सत

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रस ना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ताकी गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम।

सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी संत साजन पय सरसे, पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जगदाता सोए, भगत वसल तिहो लोए जियो, गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो, अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे, आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया, हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो, सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो, सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो, मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो, हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो, भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावई, आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे, तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो, तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो, सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया, मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे, सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया, सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया।

सुगड़ सुजान, सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना, तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणु, मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई, चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए।

खिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने। देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा। सर्व जाचक एक दाता करुणा मै जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन। हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै। रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक क्रिया। लग चरण कमल है साधी है। पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै। बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै। सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम। अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम। सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया। हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया। हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया। बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया। मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दया।

धर्मादु अंत न पाइए गुनिया राम। दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारनो। मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदारनो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेन थीवा। बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे नाम तेरा जप जीवा। राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे भव जल रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक।

का चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराध्य विपत निवारण राम संत प्राभ विपत निवारण तिस बिन अवर ना कोए जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनहु ना विसरै गुर चरण लागे दिन सा भागे सर्व गुण जगदीसरै कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसह स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो सदा सदा बल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो सलोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान संत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल तांकै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै जन्म मरण बेकार छूते फिर ना लागै दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ संत सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद भया वड भागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्याव हो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पाव हो राम कली महला पंजवा रुति सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंदन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन भय हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति महामूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन ते जन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो सलोक उद्यम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद भाव सी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहु स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया
नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निश्चल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड़ भाग पाया दुख गवाया भई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिति जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जा का वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरे आ मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंद।

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

गर्भ गले देख खाया गुररस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुख

गुण गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपन है घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सवार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द बीचारे ऊपर याद अंत तेह लोय आपे करे कथ सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होय राजन राम रवै हितकार रण महलू जय मनुआ मार।

घर होए आथ देख निवै जिस दोए आथ होए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगम अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिए जान लए मलाए, गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिए मीत, काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाले, कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिन कीती तिन कीमत पाई, और क्या कहिए किस कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुरु।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरै देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपणै, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपणै, निरपौ नाम बखान, डूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय भावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोई, टंडोलत टूंडत हौं फिरी, तह तह पवन करार, भारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौं बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेव सां, तिस बलिहारे जाऊं, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर परसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

भीड बणी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणी आप छडाए छूटी है वड्डा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय भावे तैं दे थर थर कंपै जी अड़ा थान विहूना होई।

सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखना।

काल मन जंजाली वेड़िया भी जंजाला माही बिन नावे क्यों छूटी है पापे पचह पचाही फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ हाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यो मछली फाथी जम जाल विण गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रह लिवलाए इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराए बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बाले ने जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते बिरलो ज्ञानी बूझण सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावै तैं दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन खड़िया कर कर भजे ताहे उसारे उसरे ताहे सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है परम भलाने भये दीवाने विण भागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइए पब्बे भल है गुरमुख बूझै ता निज कर वासा पाईए पब्बे भौजन मार्ग विखड़ा आस नरासा तरिए गुर प्रसादी आपो चीने जीवत्या एव मरिए।

अपना तन मन आगै देव हस्तर करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाय रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार अड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई अड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणै आपना खूलै बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हो मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती बै मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविय सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासु, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासु, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारु, रोस न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइयै गुरद्वारु, इहो मन चलतो सच कर बैसै, नानक नाम अधारु, आपे मेल मलाए करता, लागै साच प्यारु, हाटी बाटी रह निराली, रूख बिरख उद्यानी, कांड मूल आहारू खाइयै, औदू बोलै ज्ञानी, तीर्थ नहाइयै सुख फल पाइयै, मैल न लागै काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै, जोग जुगत बिद साई, हाटी बाटी नींद ना आवै, पर घर चेतना डुलाई, बिन नावै मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई, हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत् बिचारु, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेब हो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइयै पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइयै, नानक बोलै गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइयै, अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हउमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, हिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारै एक हरी, साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम सुमाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रिभवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहो तत बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिलै अंधेरा जाई, नानक हौ मैं मेट समाए, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावै साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, केत बेद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, केत बेद आसा मनसा खाई,

मन मटाया अनहद राती इह मन लाया मनसाया सा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तारनहार आज को कवन विचार कथियले सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंद्रा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरपहो घर जाइए सहज संतोख का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर कै शब्द हम बिख मारे ता निज कर होवे वासो जिन रच रचिया तिस शब्द पछाण नानक ताका दासु कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना तमाई क्यों तत्ते अवगत्ते पावे गुरमुख लगे प्यारू आपे सुरताया।

आवै गत मित शब्दे पाई आद को बिस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियली कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूझै।

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै बख्श लया।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक हउमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यों घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर बिद जानै, गुरमुख परविरत नरविरत पछाणै, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हउमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावै बोलै सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाई, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाई, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मूख द्वार, बिन शब्दै सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर

नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होए गुरमुख जागै नींद ना सोए सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दिखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवै सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादी कोई न राखै बिन शब्द नाही पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मन मुख ना बुझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मुख द्वार तत ना चीनै मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरे तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहया सुमाई नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाई सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू

साचा सतगुर शब्द सुमाई मन का जियो पवन कथि अले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुंदहा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रक्त बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जाग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हउमै विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हउमै शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रहै समाई नामे नाम रहै बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हउमै मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

जिस वसिया मन माई महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जम्मे दुख मरे, हूं मैं करत विहाई, आवन जान ना सुजई, अंधा अंध कमाई, जो देवे तिसे ना जानई, दिते को लपटाई, नानक पूर्व लिखिया कमावना, अवर ना करना जाई, महला तीजा, सतगुर मिले सदा सुख, जिसनो आपे मेले सोए, सुख है इहो विवेक है, अंतर निर्मल होए, अज्ञान का भ्रम कटी है,

कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हऊ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भउ जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करे पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा। सब किस तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। सलोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम तिस दै दित्तै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

रत बिन तन ना होय, जो सह रते अपनी तिन तन लोभ रत ना होय। पै पै तन खीन होए, लोभ रत विचों जाए। ज्यो बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी, जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया, ता बने आशिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार।

मनमुख सिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार बिन हर भगती सिंगार करह नित जम्मह हुए खुआर सह सारे विच शोभ ना पाईनी अगै जी करी सो जाने करतार नानक।

नावे दुख सहाय। नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार होए अपने सवाए आए बह गल्ला करह ओना मारे जम जंदार अगे दरगाह लेखा मंगी है मार खुआर की चह कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरै कोई कड्डो एहो विचार सतगुर मिले ता नाम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादे तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सच्यार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जे वरदाता नाही किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाई है रस कस साधा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नजरी अंदर रखदा जेती सिहत सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन वात सुपीती नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुर दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरख है खटिया भाव भावै आवो भावै जाओ शास्त्र वेद न माने कोई आपो आपै पूजा होए काजी होए कै बह न्याई फेरे तस्बी करे खुदाई बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कण हृदय समाई लोक महावह चाड़ी खाए चौंका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछै रोवह पूत
जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।